हके विनष्टे आता न एता सोवाने आ याय आ याय आ ए मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्या

तका को पवा के पचे चेता आ अम चेवे पिचोते पमयं यकय हे क्यों नम्या तालावा हे ये ये हे ये या हे या हे या हे या को ने नम नवत क्या ओवे ओवा के कुन्मो के क्वेश्चा ओयं